मोहम्मद रफ़ी सिर्फ सुरों के बादशाह नहीं थे, वे रिश्तों की मिठास, सादगी की मिसाल और परिवार के लिए समर्पित एक ऐसे इंसान थे जिनकी आवाज़ जितनी सुरीली थी उनका व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक खूबसूरत था। 1940 और 50 के दशक में एक ऐसी आवाज़ उभरी जिसने हर संगीतकार को अपना मुरीद बना लिया। नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक सभी ने रफ़ी साहब की प्रतिभा को सलाम किया। इश्क की नज़ाकत और मोहब्बत की मिठास अगर किसी आवाज़ में सबसे खूबसूरती से सुनाई देती है तो वो रफ़ी साहब की आवाज़ है। कहा जाता है कि रफ़ी साहब जितने बड़े कलाकार थे उससे कहीं बड़े इंसान थे। सादगी उनकी पहचान थी, वे नए कलाकारों की मदद करते और कभी उसका जिक्र तक नहीं करते थे। जिसे सुनकर दिलों में रोशनी उतर जाए वो आवाज़ आज भी हर महफिल की जान है।

दर्द और तड़प के गीतों में रफी साहब का कोई सानी नहीं था। उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी। भक्ति संगीत में भी रफी साहब ने ऐसी ऊंचाइयां छुईं जिन्हें सुनकर आज भी श्रद्धा उमड़ पड़ती है।

31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन कलाकार कभी नहीं मरते, वे अपनी कला में जीवित रहते हैं। शोरों का वह सितारा आज भी आसमान में है, हर दिल की धड़कन में रफ़ी का नाम है। जिस दिन संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, उसके हर सुनहरे पन्ने पर रफ़ी का मुकाम है। 1960 और 70 के दशक में रफ़ी साहब सफलता के शिखर पर थे। उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। शमी कपूर अक्सर कहा करते थे, अगर मेरी फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज़ न होती तो शायद मैं इतना लोकप्रिय अभिनेता नहीं बन पाता। शमी कपूर की उछलती कूदती शैली और रफ़ी साहब की जोशीली आवाज़ ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान एक नए संगीतकार ने रफी साहब से किसी शब्द के उच्चारण को दोबारा गाने का अनुरोध किया। वहां मौजूद लोगों को लगा कि इतने बड़े गायक को टोकना ठीक नहीं है, लेकिन रफी साहब मुस्कुराकर बोले, अगर गीत बेहतर बनता है तो मैं 100 बार गाने को तैयार हूँ। यही विनम्रता रफी साहब को महान बनाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार किशोर कुमार ने मजाक में कहा था कि वे रफी साहब को फीस नहीं दे पाएंगे। रफी साहब ने हंसते हुए कहा, तो 1 रुपया दे देना, वही काफी है। और वास्तव में उन्होंने 1 रुपये में गीत रिकॉर्ड किया था। गुलों में रंग भरे, बादे नोबहार चले, चले भी आओ कि सुरों के कारोबार चले, रफी की याद का मौसम कभी नहीं ढलता, जहां भी उनका तराना बजे बाहर चले।

प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद साहब कहा करते थे, रफ़ी के आवाज़ में खुदा की दी हुई मिठास थी। जब बेजू बावरा के गीत रिकॉर्ड हुए तब नौशाद साहब को विश्वास हो गया था कि भारतीय संगीत को एक अमर आवाज़ मिल चुकी है। सुरों की दौलत मिली तो झुकना नहीं भूले, वो आसमान पर रहे मगर ज़मीन नहीं भूले। रफ़ी साहब ने लगभग 26,000 से अधिक गीत गाए, हिंदी के अलावा पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती और कई भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। आज भी जब रेडियो पर रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है तो लगता है मानो वे हमारे बीच ही हैं।

रफी साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। शमी कपूर की मस्ती हो, दिलीप कुमार का दर्द हो, देवानंद की रोमांटिक अदाएं हो या फिर भारत की मिट्टी की खुशबू, रफी साहब हर अभिनेता की आवाज बन जाते थे। लता जी ने एक बार कहा था, रफी साहब के साथ गाना मतलब संगीत की एक पवित्र यात्रा पर निकलना था। दोनों के बीच कई वर्षों तक रॉयल्टी को लेकर मतभेद रहे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आई। बाद में दोनों फिर साथ गए और श्रोताओं को अनगिनत अमर गीत मिले।

0: वो गज़ल भी थे, वो तराना भी थे, हर दिल का सबसे प्यारा फसाना भी थे। आज भी गूंजती है फिजाओं में उनकी सदा, रफ़ी साहब सिर्फ आवाज़ नहीं, एक ज़माना भी थे। न फनकार ऐसा आया न शायद फिर कभी आएगा, रफ़ी का नाम हर दिल में यूं ही गुनगुनाया जाएगा। कुछ लोग चले जाते हैं मगर फना नहीं होते, उनके फ़न के उजाले कभी जुदा नहीं होते। रफ़ी साहब आपकी आवाज़ हमारी यादों की अमानत है, और ये अमानत आने वाली हर पीढ़ी तक यूं ही पहुंचती रहेगी। नगमों में आज भी आपका नूर समाया है, हर दिल ने बस यही प्यार से फरमाया है। आप तो चले गए इस दुनिया से रफ़ी साहब, मगर सच कहें रफ़ी तू बहुत याद आया। कुछ आवाज़ें वक्त की गर्त में खोती रहीं, कुछ फनकार ज़माने से रुख्सत होकर भी दिलों में ज़िंदा रहते हैं। जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है, जब भी वफा की बात होती है, जब भी इंसानियत का तराना गूंजता है, एक नाम खामोशी से दिल में उतर जाता है, मोहम्मद रफ़ी।
1: तेरी

रफी साहब, आपकी आवाज ने हमें हंसना भी सिखाया, रोना भी, इश्क भी सिखाया और इबादत भी। शोरों की शमा कभी बुझ नहीं सकती, रफी की गूंज कभी रुक नहीं सकती। जिस आवाज ने दिलों को रोशन किया, वो आवाज कभी खामोश हो नहीं सकती। 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब का निधन हुआ तो मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बताया जाता है कि लाखों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बारिश हो रही थी लेकिन लोगों की आंखों में उससे कहीं ज्यादा आंसू थे। उस दिन हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, ऐसी आवाज अब कहाँ। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है। रफी साहब भी ऐसी ही अमर शख्सियत हैं। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आकाशवाणी नागौर चिरमी चैनल परिवार की ओर से। रफी साहब चले गए मगर उनकी आवाज आज भी कहती है, मैं जहाँ रहूं तो मुझे याद करते रहना। तो ये था रफी साहब की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने, आलेख वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ चीपा का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार। वो सुरों का मुसाफिर चला भी गया पर उसकी सदा आज भी गूंजती है। जिसे लोग रफी कह के पुकारते थे वो आवाज हर दिल में आज भी बसती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महान गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। वाचक एवं प्रस्तुति सहायक थे मोहम्मद शरीफ छिपा और प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। FM & 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुने गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत भी मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म जीने की राह।

0: आरबीआई ओम्बुड्समैन।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आप आए बाहर आई से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में, आवाज मोहम्मद रफी की, बोल निदा फाजली के, और फिल्म आप तो ऐसे ना थे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म कन्यादान से, जिसमें आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीतकार नीरज।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म दो रास्ते, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बोल आनंद बख्शी के, आवाज मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के, फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में फिल्म ये जो मोहब्बत है, संगीत अनु मलिक का है, गीतकार आनंद बख्शी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन लेने

0: वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत जुबिन नौटियाल और आकांक्षा शर्मा की आवाज में, फिल्म रुस्तम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे थे ये कव्वाली लैला मजनू फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, अज़ीज़, नाज़ा और शंकर, शंभू, अमर कुमार और साथियों की आवाज़ें थीं, शायद ध्यानवी के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में ये दादरा आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोताओ हमने आपको लैला मजनू फिल्म की कवाली सुनवाई थी, उसमें संगीत था मदन मोहन का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक पल इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका और भूपेंद्र हेमंती की आवाजों में गुलजार के बोल थे, भूपेंद्र हजारिका की तर्ज थी।

0: तस्कीन एल्बम का ये गीत था छाया गांगुली की आवाज में, पयाम सईदी का कलाम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

आप सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से ये गीत उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। संदेश शांडिल्य की तर्ज थी। संदेश शांडिल्य का लिखा ये गीत था श्रोताओं।

0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने सजाए हैं मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

आप सुन रहे थे वापस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रफ़ी को आपने सुना फिल्म दोस्ती में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था श्रोता।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लाल किला फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी को, बहादुर शाह जफर के लिखी ये इबारत थी, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। इंदीवर का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म कुर्बानी।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रफी की आवाज में हकीकत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कैफी आजमी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था, नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
3: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बांसवाड़ा के

0: गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में नए अकादमिक भवन, कुलगुरु आवास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने टीबी मुक्त और नशा मुक्त राजस्थान के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। श्री बागड़े ने जनजातीय समाज की जल, जंगल और जमीन संरक्षण की परंपराओं पर अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता जताई। अजमेर में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का सम्मेलन आइसाकॉन राजस्थान 2026 कल से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाएं रखी गई हैं। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, चिकित्सा शिक्षक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि मुख्य सम्मेलन कल और परसों पुष्कर में होगा। इसमें एनेस्थीजिया, क्रिटिकल केयर, रोगी सुरक्षा और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से जुड़े वैज्ञानिक सत्र, व्याख्यान और पैनल चर्चाएं होंगी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी और मिठाई भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ डिब्बों की सुविधा शुरू की है। भरतपुर डाक मंडल के अधीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए तैयार किए गए इन डिब्बों में भेजा गया सामान सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि वाटरप्रूफ डिब्बे की कीमत 30 रुपए है और इसमें 500 ग्राम तक का सामान भेजा जा सकता है। इससे अधिक वजन होने पर पार्सल शुल्क लागू होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर पानी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बरसा। इसके अलावा डग, दानपुर, बिजौलिया और सरवर में 5-5 सेंटीमीटर बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के रियायती पौधा वितरण अभियान के तहत अब तक 6638 छायादार और फलदार पौधे वितरित किए जा चुके हैं। जेडीए के अनुसार इस वर्ष आमजन के लिए 85,000 पौधे रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए पे फॉर प्लांट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है। पौधों का वितरण रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 12 केंद्रों पर किया जा रहा है। जेडीए ने पौधरोपण की सही तकनीक की जानकारी देने की भी व्यवस्था की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति परीक्षा परिणाम से पहले बिना अधिकृत सूचना के सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य और आंकड़े साझा कर अभ्यर्थियों और आमजन में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से केवल आयोग की अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। राजधानी जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। सहकारी मॉडल पर आधारित इस सेवा से यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी। ऐप आधारित इस सेवा को दूसरी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की तुलना में 10 से 15 फीसदी कम किराए वाला बताया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस

ये फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है श्रोताओं इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। मोहम्मद रफी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें जरूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओं बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण ठाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप, ताल, तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, और बीच में जो पखावज तबले के बोलू और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफी हम

बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हो, मोहम्मद रफी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें जरूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की वो जादुई आवाज, सांसों का सरगम, जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्तिभावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा, कोहिनूर रहे रफी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपको ये फिल्म पहचाननी है।

हम सूरज का ये गीत था आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं, हस्र जयपुरी कृष्णा थी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में राग शिवरंजनी का प्रभाव इस गीत में नजर आता है। एक बहुत ही सुंदर संवेदनशील और रोमांटिक प्रकृतिक राग है ये श्रोताओं, जो दिल के तारों को झकझोर देता है। इस राग में अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ग प ध स्वर लगते हैं। रफी साहब ने इस राग की कोमलता और ठहरी हुई मिठास को अपनी आवाज में जिस तरह से उतारा वो रूह को छू लेती है। और अगर इस गीत के आरोह अवरोह के फैलाव की बात करें तो बहारों फूल बरसाओ की जो उठान सीधे मध्यम और उच्च स्वर के सहज सफर के साथ होती है, जो सुनने वालों के मन में उल्लास भर देती है। गले की लोच की बात क्या कहें कि शब्दों का उच्चारण के जो साथ साथ मींद यानी सुरीला खिंचाव और गमक का प्रयोग इस गीत में किया गया उसे ये शास्त्रीय

दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है, बिना किसी अतिरिक्त आप देखेंगे कि भारीपन और बनावट के, केवल भावनाओं की गहराई से इस राग को जीवंत किया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो ये गीत आप सुन रहे थे और उनकी याद हम ताजा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गुल बलोच फिल्म की बात की है। जी हाँ, ये फिल्म थी और जो पहला रिकॉर्डेड गीत था सोनिए नी हीरिया नी, ये गीत था जो मोहम्मद रफी जी ने गुनगुनाया और ये रिकॉर्ड बन पड़ा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के संगीत के कोहिनूर हैं मोहम्मद रफी जी, जिसकी आवाज एक अलग अंदाज बनकर हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बस गई। हम जब भी मोहम्मद रफी जी का कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और ये उस जादुई आवाज का करिश्मा जो शायद ही दूसरे कोई गायकों में ऐसी काबिलियत होगी। ऐसे महान और दिग्गज गायक मोहम्मद रफी जी को विनम्र नमन। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम रूहानी आवाज के दौर में जन्म हमने लिया है, वो आवाज जो हर किसी को हर तरह के गानों में सुकून देती है, तो आज भी मिसाल गाने सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, यूं तो अब बहुत सफर किए हमने, हर राह से कुछ सिखाया है, पर विविध भारती का सुरीला सफर दिल के सबसे करीब आया है, तो मिलते हैं। और एक और श्रोता लिखती हैं कि ब्रज में होली खेलत नंदलाल, रवि साहब ने इस गीत में गजब का उत्साह और उमंग भरा है। शुरुआत में पारंपरिक जोगीरा सारा दारा की गूंज और उसके बाद रफी के खुले गले से निकला स्वर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। और इस गीत को पहचानिए, कौन है अदाकार?

फिल्म ससुराल का ये गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण ठाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए, यानी सा स्वर से बेहद कोमलता और नजाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत गीत के बोल, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज की मिठास, ठहराव, मुर्कियां ये सभी इस्तेमाल किए हैं वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें, तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नजर आता है, जिसके साथ रफी साहब की जो अलगाकारी है स्व संवाद करता है ये गीत। अंतरे में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं? यही है कि हम सब मोहम्मद रफी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी जिंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अभी तो स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफर तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में ढकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बजने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूलकर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफी साहब की आवाज ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे जो ग्रामाफोन पर बजते थे उनकी जो यादें थी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, यानी हम बात कर रहे हैं रफी साहब के गीतों के कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो, और इन्होंने मोहम्मद रफी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओं, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से, और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं, वैसे रफी साहब की आवाज जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नजर आती है, और जो एक फुसफुसाहट सी रूमानी एहसास लिए जो रफी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गजब का है श्रोताओं, जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है, लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज है जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफी साहब नहीं रहे, तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों, यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज जो है आपको किस अभिनेता पर खास

हुई नजर आती है। और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया, फिल्माया गया, वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की, तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज थी। नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओं, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींड का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं श्रोताओं, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये, एक मोहम्मद रफी ने अपने जादुई आवाज का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफी साहब की अगर आवाज को आप सुनेंगे तो गजल नुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है, जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूंगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं, और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफी जी की अमर आवाज की झलक समाई हो। आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले

वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था। उन्होंने इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक बढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। तारिक और काजल किरण पर फिल्माया गया, जो नजर आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं, रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शमी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शमी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ किस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओ, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शम्मी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी साहब के। वैसे श्रोताओं, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो, तो आप हमसे जरूर बता सकते हैं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
0: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ीराम हेडगेवार थे।
1: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
0: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और

वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्मबलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं।

0: लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉयस राय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

बंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था, और इन शब्दों के कारण, आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था।

0: था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है।

0: हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़े कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल SDF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरल, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश

0: के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: लोगों ने गाया, शकील बदायूनी, मौसिकार रवि, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत था। फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सू आयो विनायक करवे नरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और हम आपको सुनवा रहे हैं फनकार मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

0: संगीतकार रवि का स्वदिखिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा।

नौशाद की तर्ज थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में मदर इंडिया फिल्म का गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: ये रास्ते हैं प्यार के, सुन का गीता मोहम्मद रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में ढाला रवीन ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे इस गीत के साथ ही अब संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए सदाबहार गायक मोहम्मद रफी के गाए चुनिंदा नगमे। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं जिसके जरिए हम

0: दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: जी हेलो सहेली।
0: नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ और ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए, आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर पर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए जिसके कारण हमें जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है।
0: जी जी
1: रहता है
0: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी जी।
0: सत श्री अकाल। बताइए कौन सी
1: हाँ
0: सहेली ने
1: जी, हम
0: फोन लगाया
1: दीदी
0: है?
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से जी।
0: अपना नाम बताइए।
1: रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी,
1: हाँ जी
0: बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, और
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं?
1: जी शौक तो यही है जी। मैं तो ज्यादातर जी घर में यही कपड़े सिलाई करती हूँ। यही मेरा शौक है जी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट।
0: जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते। वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी। रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है। मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली से, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: जी, तो बताइए कौन
1: हाँ
0: सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ मैम, हाँ, एक दो लोग हैं।
1: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैम हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ मैम।
1: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। ये बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं?
1: जी हाँ
0: जी जी जी। अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है, अभी रुकी हुई है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और

0: भी लगने वाला है।
1: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश
0: जी
1: ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी
0: जी
1: बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
0: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है, और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं। और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे, और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद में छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जी मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
1: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजवी है, नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जिंदगी
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ, खुद
0: अच्छा
1: का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत
1: जी,
0: अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से, दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है, वो जीत जाएंगे हम मां के पर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी, जी बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ। मैं
0: शॉल बनाती हैं जी।
1: हाँ
0: शॉल की बुनाई करती हैं जी।
1: हाँ दीदी।
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ।
0: जी जी जी चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है
1: हाँ दीदी।
0: जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से, मध्य
0: जी प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी,
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और जो बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है। ये बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है जी।
0: जी
1: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में।
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: हाँ
0: हुई हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी
1: बिल्कुल
0: आपने रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे, और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं, और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता

0: से जो लोग दोस्ती निभाते हैं वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं,
0: जी
1: है ना। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
0: जी
1: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
0: जी
1: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख तो बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
0: जी यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: तो आपका दिन का बिल्ला है उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
1: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
0: जी
1: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली
0: जी तो हम
1: बहुत
0: सभी
1: ही
0: को
1: प्यार।
0: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं बेचारे भूखे होते हैं तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
0: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: जी मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: जी।
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: हाँ जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना, मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ।
0: जी मासूम फिल्म का गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानि 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288 यानि 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानि 022। चलते चलते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: कहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं, अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस बस 5 मिनट, क्या करूं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: बच्चों के साथ खेलेंगे, खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी। आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं, इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
3: कौन जाने मैं क्या हूं, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी। फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया है।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट

झट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए। इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत, किसी के

में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी-कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हाँ, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह, कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? उफ़ो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

0: है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतराए जा तुला। पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है।

दिस मैच, पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिस मैच। पर जो भी है, शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कार्यक्रम युववाणी में मैं हूं आज आपका रेडियो दोस्त और आज के इस प्रोग्राम का होस्ट सोम कविया, लेकर हाजिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम। आशाओं से भरे, उम्मीद से भरे इस प्रोग्राम की बातें और सुंदर सुंदर गीत आपके लिए हाजिर। मित्रों, प्रकृति जो है अपना रूप सुंदर बना रही है। प्रकृति के लिए महाकवि निराला ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। मित्रों, महाकवि निराला जिन्होंने प्रकृति का ये सुंदर वर्णन अपनी कविता में किया और आज इस सावन के मास में हमें प्रकृति कुछ इसी तरह से नजर आती दिख रही है। तो कार्यक्रम के इस शुभारंभ के बाद चलते हैं चर्चा की तरफ। आज की बात में हम आज बात करेंगे खेलो इंडिया योजना के बारे में। दोस्तों, भारत एक युवा देश है और यहाँ की बड़ी आबादी युवाओं की है। युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास तथा स्वस्थ जीवन शैली का विकास होता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली विद्यालय खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की। खेलो इंडिया का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब हम बात करें खेलो इंडिया योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है। मित्रों, इसका उद्देश्य है देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभा

खिलाड़ियों की पहचान करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता प्रदान करना, इसके साथ साथ बच्चों और युवाओं को नियमित रूप से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, खेलों से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का विकास करना और देश में खेलों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना। खेलो इंडिया के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर दिया जाता रहा है। योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत खेल प्रशिक्षण, खेल मैदानों एवं अन्य खेल अवसंरचनाओं के विकास, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने जैसी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे स्थानों पर जहां खेल सुविधाएं सीमित हैं, वहां खेलों के विकास को बढ़ावा देना इस योजना का महत्वपूर्ण पक्ष है। चर्चा जारी रहेगी, सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया योजना के तहत। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि खिलाड़ियों के लिए इस प्रतियोगिता के आधार पर या इस योजना के आधार पर क्या लाभ हो सकते हैं। खेलो इंडिया से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता विकसित करने के अवसर मिलते हैं। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर और आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाता है। इससे ऐसे बच्चों और युवाओं को भी आगे आने का अवसर मिलता है जिनमें प्रतिभा तो होती है लेकिन आर्थिक या अन्य कारणों से उन्हें पर्याप्त मंच नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं खेलो इंडिया और युवा विकास की। खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलों में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास, धैर्य, समय प्रबंधन, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को नशे एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों से दूर रखकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथियों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। खेलों में महिलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। इससे खेलों में अधिक समावेशिता आती है और देश के अलग अलग हिस्सों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि खेलो इंडिया योजना भारत में खेलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना खेल प्रतिभाओं की पहचान करने, युवाओं को खेलों से जोड़ने और देश में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने में सहायक है। यदि विद्यालय स्तर से ही बच्चों को खेलों के लिए उचित सुविधाएं और प्रोत्साहन मिले तो भारत भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार कर सकता है। इसलिए खेलो इंडिया स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी युवा भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये चर्चा अभी ही संपन्न होती है और लेके चलते हैं हम आपको फिर से म्यूजिकल

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किड बैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
6: एक बार फिर से आपका स्वागत है साथियों। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये बातें आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट पर। और अगला हमारा चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रमों के तहत नई रोशनी योजना की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समूहों के लोग रहते हैं। देश के सभी वर्गों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती हैं। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और नेतृत्व से संबंधित विषयों के बारे में जागरूक करने में सहायता करती है। नई रोशनी योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण देकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक जागरूक एवं सशक्त बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात करें तो वो हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना, महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वित्तीय विषयों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को अपने परिवार और समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना। नई रोशनी के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न उपयोगी विषयों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। इसमें नेतृत्व विकास, महिला अधिकार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, वित्तीय जागरूकता तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे विषय शामिल हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि महिलाओं में ऐसी क्षमता विकसित करना जिससे वे अपने परिवार और समुदाय से जुड़े निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभा सके। चर्चा जारी रहेगी, सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में हम बात कर रहे हैं नई रोशनी कार्यक्रम की। तो महिला सशक्तिकरण की भूमिका पर विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया जाता है, और महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, इसका संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक भागीदारी से भी है। तो नई रोशनी योजना का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। जब महिलाएं शिक्षित, जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं, तो वे अपने परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सरकार की इस योजना में आप जो भी योग्य हैं उसकी भागीदारी का फायदा उठाएँ। तो मित्रों, कार्यक्रम के लिए घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो इन शब्दों के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं यारों, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।

दोस्तों चलते रहें, चलते रहें और चलते रहें, अपनी मंजिल अपने आप नज़दीक आती जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त सोम कविया को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, नमस्कार। फाइनेंशियल

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिला जगत।

मिले जगत सुनने वाली सभी सखियों को रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों हाजिर हैं लेकर आपका अपना मन भावन कार्यक्रम और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चर्चा से। सखियों आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई जाती है। तो ये जो दिन है ये मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस के रूप में हम जो मनाते हैं ये 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम धर्मपत राय श्रीवास्तव और उपनाम उनको मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट जो कलम का सिपाही से मिला। जन्म तिथि 31 जुलाई 1880 और स्थान उनका लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वो है। अगर हम इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उपन्यास इनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोदान का नाम प्रत्येक जो साहित्य का थोड़ा सा भी जानकार है तो वो जानता है। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्म भूमि और कहानियों की बात करें तो उनकी कहानियों में जो प्रसिद्ध कहानी है उनमें ईदगाह का नाम सबसे पहले आता है और पूस की रात और कफन, दो बैलों की जो कथा है वो, और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने अपनी कहानियों में गरीब किसान और मजदूरों की बात रखी और उनकी याद में स्कूलों और कॉलेज में जो नाटक, भाषण और वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित होती ही रहती हैं। तो इनके पिता का नाम अजायब राय था और वह डाक खाने में मामूली जो है नौकर के रूप में काम करते थे। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास होने के बाद अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जो है उनको करना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जो है वो कथाकार, उपन्यासकार और दोनों के रूप में ही जाने जाते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं और उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। प्रेमचंद जो है वो जब लिखते हैं तो वो अपने जो पात्र रखते हैं उनमें वो जो है जीवंत जो उदाहरण पेश करते हैं और वो समाज के उन कड़वे सत्यों को अपनी लेखनी के द्वारा बताते हैं और बड़ी ईमानदारी से वो

बताते हैं, और उनकी जो लिखने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे मशहूर और सर्वश्रेष्ठ कृति उनकी गोदान की अगर हम बात करें तो भारतीय किसानों के जीवन, उनके संघर्ष और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यथार्थ तस्वीर उन्होंने पेश की। इसके अलावा उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास जो हैं, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, वो भी उनमें उन्होंने बहुत ही जो है सामाजिक, उस समय के सामाजिक जीवन को अपनी कलम के द्वारा उकेरा है। और कफन और ईदगाह जैसी कहानियां तो बहुत ही उनकी लोकप्रिय हैं। जब हम बात करते हैं कफन की, तो गरीबी और भूख की लाचारी को दर्शाने वाली उनकी जो अंतिम व सबसे मर्मस्पर्शी कहानी के रूप में है। और ईदगाह की बात करें तो एक छोटे बच्चे हामिद का अपनी दादी के प्रति असीम प्यार और उसका त्याग, खिलौने नहीं लेना, मिठाई नहीं खाना और दादी के लिए चिमटा लेके आना, वो बड़ा अद्भुत उन्होंने जो है लिखा। और दो बैलों की कथा की बात करें तो झूरी के दो बैल जिनका नाम हीरा और मोती उन्होंने रखा, के माध्यम से उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है और उन्होंने ये भी बताया कि भाईचारे का संदेश क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद की तारीफ अगर करें तो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने जो लिखा वो आज भी सार्थक है। आज भी अगर हम उनकी कृतियों को पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत ही जो है सार्थक लगती हैं और हमें सीख देने वाली वो होती हैं। तो इस तरह से जो मुंशी प्रेमचंद का जो है लेखन रहा। और आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी।

0: आयोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: ऐसा क्यों, अब हम चर्चा करेंगे आज जो है गरीब नवाज रोजगार योजना के बारे में। ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री की जो अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आने वाली योजना है और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2017-18 में ये शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण देना है और शुरुआत 2017 में हुई और अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा ये शुरुआत की गई। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है, जिसको MAEF के नाम से भी हम जानते हैं, क्रियान्वयन हुआ और इसका उद्देश्य जो है वो है अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कम समय के लिए कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना। प्रशिक्षित युवाओं में से कम 70% को नौकरी या रोजगार दिलाना जरूरी होता है। इस योजना का यही जो है वो उद्देश्य है। आर्थिक मदद की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान जो है मासिक वजीफा दिया जाता है और रोजगार मिलने के बाद 2 महीने तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। आइए अब करा दें आपका फिर से मनोरंजन और सुना दें एक और प्यारा सा गीत।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: क्यों आज विश्व रेंजर दिवस भी है? हर साल 31 जुलाई को जो मनाया जाता है, ये दिन प्राकृति और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करने वाले वन रेंजरों के प्रति जो समर्पित आज का दिन है, ये जो है महत्वपूर्ण कार्यों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवाने वाले, घायल होने वाले रेंजरों को आज के दिन श्रद्धांजलि भी दी जाती है और पृथ्वी के वन्य जीवों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जो है रेंजरों के योगदान की पहचान की करके उनकी सराहना करने का भी आज का दिन है। जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव अपराध जैसी चुनौतियों के खिलाफ उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आइए फिर से कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सखियों, अब हम चर्चा करेंगे मानसून में मुहासे बहुत हो जाते हैं, कैसे रोकें इनको। तो सबसे पहले तो सखियों, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें चाहिए कि मुंह हाथ धोते रहें और साफ सफाई रखें, तले भुने व्यंजन हम ना खाएं और स्किन पर किसी भी प्रकार की चिपचिपाहट ना होने दें। हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं और ज़्यादा कुछ चिकना हम ना लगाएं इन दिनों में। कुछ जो महिलाएं होती हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन से जो हमारी चमड़ी के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसे मौसम में हमें पाउडर लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन के पोर्स हैं उनको बंद करते हैं। और अगर पहले से ही मुहासे हैं और मानसून आ गया है तो ये जो मुहासे हैं ये इन दिनों में ज़्यादा फैलते हैं, तो इसके लिए हमें इसका उपचार लेके रखना चाहिए और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार तो नीम के पत्तों से स्किन को साफ़ करना भी बहुत जो है लाभकारी रहता है इन दिनों में। हमारे जो घरेलू उपचार पहले होते थे उनमें नीम की छाल को भी जो है पीस कर पानी में जो है रगड़ के उसको और जो मुहासे जहाँ है वहाँ लगाया जाता था और वहाँ से वो जो स्किन है वो फिर से ठीक हो जाती थी। परंतु आज के संदर्भ में हमें अपने आप की स्किन को पहचानना है कि कहीं कोई चीज़ नुकसान नहीं कर दे, तो बिना डॉक्टरी सलाह के हमें कोई काम नहीं करना है और हमें अपने जो मुहासे हैं अगर वो हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि नज़रअंदाज करने से वो ज़्यादा फैल सकते हैं। खाने पीने पर सखियों इन दिनों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मौसमी फल हमें खाते रहना चाहिए, हरी पौष्टिक सब्जियां हमें खाते रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। सखियों, अब घड़ी की सुइयां कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं, तो रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत कार्यक्रम एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां

0: संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खुदगर्ज़ का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। गीत इंदिवर का है और संगीत राजेश रोशन का।

0: फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के इस कार्यक्रम की कलाकारा हैं बीना कुमावत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन

रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY को मंजूरी दे दी है। साथ ही पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के जरिए इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाई गई है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। इसमें वर्तमान जलाशयों, नहरों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग होगा। योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
1: इस स्कीम में टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टिक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है, जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकना और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जयपुर राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज से 2 अगस्त तक हो रहे इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है। सम्मेलन में 8 तकनीकी सत्र रखे गए हैं। इनमें मध्यस्थता, न्याय तक प्रभावी और समावेशी पहुंच और कानून के शासन को मजबूत करने सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा शांति

0: मध्यस्थता है। इसके जरिए पक्षकारों की आपसी सहमति से समाधान पर जोर दिया जाएगा और समाज में शांति और सौहार्द की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जयपुर में आज से इंडिया ट्रेवल मार्ट की शुरुआत हुई। पर्यटन उद्योग में नए अवसरों, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन रखा गया है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: ITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। ITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया है कि सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी। इसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि इन चुनावों की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
2: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएंगे। श्री खर्रा आज झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।
3: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी करें। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो हम तुरंत उपलब्ध।
0: प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया जा रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि ये सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री प्रसाद ने आज VC के जरिए खरीफ फसल की गिरदावरी के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। VC में राज्य के सभी जिलों के प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार, रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर जुड़े। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत प्रदेश की 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि की ई गिरदावरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि सर्वे से मिलने वाले आंकड़े फसल उत्पादन, आकलन, नीति निर्माण, PM फसल योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित अन्य योजनाओं के लिए आधार प्रदान करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल से देश भर में स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी

0: भी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है, जिससे हर बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत मिल सके। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम ने जोधपुर में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि आरोपी निजी नर्सिंग होम पर पिछले काफी समय से ये काम कर रहा था। उसके कब्जे से पोर्टेबल मशीन और परीक्षण के एवज में ली गई 50,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी परियोजना निदेशक सोनल मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल की अगुवाई में टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की ओर से लोगों से किसी भी संदिग्ध लिंक या अनजान व्यक्ति के कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मित्री ने लोगों से किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने या नजदीकी पुलिस थाने को संपर्क करने को कहा है।
1: तो मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़ें। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है, और नंबर दो आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है। तो ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। पिछले महीने जिले में रोजगार, जनकल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। अच्छी मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पास रिफाइनरी का लोकार्पण कर प्रदेश में सरकारी नौकरी में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके तहत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम हुआ, जहां नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने, विकास कार्यों में तेजी बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा में शहरी जन कल्याण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम और नगर विकास न्यास में लगाए गए शिविरों का अवलोकन कर लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाले लोगों के काम तय समय में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को राहत मिले। जिले में मॉनसून की अच्छी बारिश का असर अब खेतों और जलाशयों में दिखाई देने लगा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से नदी, तालाब और बांधों में पानी की आवक हुई है। आसींद क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश से खरीफ फसलों को भी संजीवनी मिली है। मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल की फसलें अच्छी स्थिति में हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अनुकूल रहा तो इस बार उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है।

0: श्रावण माह के शुरू होने पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तिलस्मा और हरिणी महादेव सहित विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और सहस्त्र धारा की जा रही है। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर में पूरे सावन माह के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मामले की जांच जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने दूर दराज से उपचार के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष देखभाल वार्ड की व्यवस्था भी शुरू की है। अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर सभी विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रशासनिक काम भी शुरू कर दिए गए हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार के केंद्रीय दल ने भीलवाड़ा का दौरा किया और समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी 14 विकास खंडों में 831 विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। विदेशों में रहने वाले भाइयों तक समय पर राखियां पहुंचाने के लिए विशेष लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में बहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और विदेशों के लिए राखियां बुक कराई हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे सदारत माए आज भी कैबिनेट री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई चावेला। राष्ट्रमंडल देशारो न्यायिक महाकुंभ जयपुर माए शांति मध्यस्थता और कानून रा राज ने मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। प्रदेश माए निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त ने अधिसूचना जारी करी चावेला। और राज्य माए काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना ने मंजूरी देनी है। इस आगे पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया री मियाद 5 साल सारू बधावन रो फैसलो करी चियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज भी कैबिनेट री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने मीटिंग माए करी चिया फैसला री जानकारी दीनी। वे बतायो कि जल निकाया माथे फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करण सारू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाईची है। मंत्री बतायो कई सारू 5,070 करोड़ रुपया रो बजट रखी चियो है। वे कहो कि इन योजना रा तहत 5,000 मेगावाट री 3,300 फोटोवोल्टेक परियोजना विकसित करी चावेला। श्री वैष्णव कहो कई सारू जनतारी और जमी लेवन री जरूरत नहीं वेला। 5 साल री ई योजना सारू मौजूदा जलाशय नहरा और तलाव काम लिया जावेला।
2: इस स्कीम में टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि

0: पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके. प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग. सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सबका उपयोग किया जा सकता है. और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा.
1: संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई नीट पेपर लीक मुद्दा मथे विद्यार्थियों रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा मथे विपक्ष रो हंगामो आज ही चालतो रह्यो. लोकसभा में शोर शराबा बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 पास करती उच्चियो. इन बिल रो मकसद जन्म और मौत रा पंजीकरण में मोड़ो वेवणु रोकण सागे फर्जी कागजात माथे रोक लगावणु है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सदन में ओ बिल पेश कीनो. विपक्षरा हंगामा बीच बिना चर्चा ओ बिल पास करती उच्चियो. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये बिल माथे चर्चा में शामिल नी भेवण पर विपक्षरी आलोचना कीनी. संसद रा दोन्यू सदनारी कार्रवाई सोमवार ताई टालती रिची है. जयपुर में आज राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन शुरू हो रहा है. 2 अगस्त ताई चालन वाला इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों रा जज, कानून रा जानकार, नीतियां बनावण वाला और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं रा नुमाइंदा शामिल हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस सम्मेलन रो उद्घाटन कर रहा है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली मौजूद है. सम्मेलन रा 8 तकनीकी सत्र में मध्यस्थता, न्याय ताई सगला री असरदार पहुंच और कानून रा राज ने मजबूत बनावन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चारियो है. सम्मेलन री सब खास बात शांति मध्यस्थता है जिन रे जरिए पक्षकारा रा आपसी राजीनामाओं समाधान माथे जोर दियो चावेला. राज्यपाल हरिभाव बागड़े जनजातीय हलका माए ऊंचा दर्जारी भणाई ने बधावो देवन सारू बत्तियों बत्ती कोशिशा करण माथे जोर दीनो है. वे आज जयपुर रा लोक भवन बांसवाड़ा रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय माए बनाई जिया नुआ अकादमिक भवन रो उद्घाटन करण और स्वामी विवेकानंद री मूर्त रो अनावरण करण रे मौके बोल रहा है. राज्यपाल कहो कि आदिवासी जल, जंगल और जमीरा साचा पहरेदार वह है और वाणी पानी और कुदरत ने बचावण जुड़िया रीति रिवाज माथे शोध और अनुसंधान करो जाऊणु चाहिए. राज्यपाल प्रदेश माए नशारी लत जड़ों खत्म करण सारू स्थानीय लोगों चर्चा कर और लगातार कोशिशा करण बाबती कहो. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम माए ऑनलाइन तरीकाओं शामिल भया. जयपुर में आज इंडिया ट्रेवल मार्ट शुरू हो. सैर सपाटाओं जुड़िया कारोबार में नुआ मौका, निवेश और भागीदारी ने बधावो देवन सारू ओ आयोजन राख्यो जा रियो है. 2 अगस्त ताई चालन वाला इंडिया ट्रेवल मार्ट रे बारा में और ब्यूरो समाचार कक्षों.
2: ITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है. ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है. इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं. देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं. ITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे. इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी. इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी. रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर.
1: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि सरकार बेगोई आरक्षित वार्डा रो ऐलान करेला जिन पाछे निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां ने अंतिम रूप दियो चावेला. आकाशवाणी सागे खास बातचीत रे दौरान वे बतायो के चुनाव री अधिसूचना 15 अगस्त न जारी करी जावेला.
3: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं. हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे. जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे. और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं.

0: कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
1: इस बीच नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो है कि प्रदेश में आए निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन रा आधार कराया जावेला। श्री खर्रा आज झुंझुनू जिला रा कमालसर गांव में राखी जाए गैर सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ पाछे खबर नवी सागे बातचीत कर रहा है। वे कहो कि महकमारी ओरों चुनाव जुड़ी सगली तैयारियां ई साल मार्च महीना में ही पूरी कर ली रिजी ही।
2: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं।
1: प्रदेश में काल खरीफ क्रॉप डिजिटल सर्वे शुरू करियो चावेला। राजस्व मंडल रा रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद आ जानकारी दीनी। वे बतायो के ओ सर्वे राज्य रा सगला जिला नी तहसीला और राजस्व गांवा में ऑनलाइन तरीका करायो चावेला। डिजिटल क्रॉप सर्वे रा तहत प्रदेश रा 4,62,00,000 उम्बत्ता खसरा रे नियमारे मुजब गिरदावरी करी चावेला। सर्वे सारूप खेती लायक 2,86,00,000 खसरा री पिछाण करी ची है। बाकी खसरा माए सरकारी जमीन और गैर खेती री जमीन री गिरदावरी करी जावेला। राजस्व मंडल रा रजिस्ट्रार बतायो के राज खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप ऑनलाइन गिरदावरी रो सुबितो दियो जावेला। ध्यान जोग है कि सर्वे में मिलन वाला जानकारी साखा री उपज रो आकलन करण सागे नीति बनावण पीएम फसल योजना और प्राकृतिक आपदा राहत समेत न्यारी न्यारी योजनावां सारू बुनियाद रो काम करेला। कालू आखा देश माए स्तनपान सप्ताह मनायो जावेला। स्वस्थ भारत सारू परिवारा समुदाय और स्वास्थ्य सेवा देवन वाला बीच स्तनपान नु जुड़ी जाग जगावण रा मकसद ओ सप्ताह मनायो जावेला। नुआ जन्मिया बाळक रा विकास सारू स्तनपान सब असरदार जतन है। इस मौके महिला और बाल विकास मंत्रालय रे ओरों स्वास्थ्य पेशेवरां सामुदायिक कार्यकर्ताओं और जनताओं स्तनपान सारू जरूरी वातावरण बनावण री अरज करी ची है। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम जोधपुर माए पेट माए पढ़ रहा बच्चा रे लड़का या लड़की भिवण री गैर कानूनी जांच रा आरोप माए एक जना ने गिरफ्तार किन्नो है। मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो के आरोपित रे एक नर्सिंग होम माए लाडला भगत ओ काम करण री जानकारी मिली है। पकड़ी जिया मिनक हूँ पोर्टेबल मशीन और जांच री एवज माए लीरी जी 50,000 रुपया री रकम बरामद करी जी। प्रदेश माए साइबर ठगी और ऑनलाइन तरीकाओं करी जावन वाली धोखाधड़ी बचाव सारू पुलिस जनताओं किणी शंका लायक लिंक या अनजान नंबर फोन आवण पर सावचेती राखण री अरज कीनी है। सवाई माधोपुर री एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी जनताओं साइबर ठगी भेवन री सूरत में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 माथे शिकायत दर्ज करावण या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करण सारू कहो।
3: तो मेरा आपसे निवेदन है कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़े। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है, और नंबर दो आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है। तो ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
1: हिंदी साहित्य रा महान कथाकार और उपन्यास सम्राट कहा जावन वाला मुंशी प्रेमचंद री आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के जरिए मुंशी प्रेमचंद ने श्रद्धा भाव सागर याद करता था का कहो कि वे हमारी कालजयी रचनावां के जरिए इंसान री भावनावां ने मजबूत तरीका रखी और हमारो साहित्य हमेशा सीख देतो रहवेला। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई जावेला। राष्ट्रमंडल देशारो न्यायिक महाकुंभ जयपुर में शांति मध्यस्थता और कानून रा राज ने मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो जावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त ने अधिसूचना जारी करी जावेला और राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो जावेला। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
4: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

बीघा के हिसाब हूँ कह वहाँ तो 5-6 बीघा में लंगे टंगे आवे कि भाई भी कम कम है आप माना 5 लेर 10 टन तक की खाद है जबकि होनी चाहिए देसी खाद अपने देसी खाद को मम है कि जबकि सड़ी गुड़ी गोबर की खाद है भी खाद को भुरकाव करना जरूरी है। और प्रति जबकि हेक्टर में है घणों तो में कम है नाइट्रोजन की भी कमी रहे तो 10 लेर 50 किला तक ज्यों खेत की जरूरत के हिसाब नाइट्रोजन के रूप में अपन है जबकि अंग्रेजी खाद है DAP भी भुरकाव भी करना चाहिए। यूं तो देखो कि ये जबकि मूंगाली फसल रहा गंवार की फसल है अंक जड़ा में एक ऐडा जीवाणु है जकन राइजोबियम जीवाणु किया करे बे जीवाणु का ही करे कि हवा की जबकि नाइट्रोजन है बिन शौक परी भी नाइट्रोजन का यौगिक में बदल देवे और बी रे कारण वो जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वे फसलें जबकि खुद कर ले जट कोई फसल में जितनी जरूरत वे भी तो नहीं वे तो आपने जरूरत मुजब है जबकि खाद नाखनी चाहिए। और पच्चे देखो कि खास आपने ध्यान रखना है कि भाई बीज को तो बीज एक यान की चीज है जबकि पैदावार में सवय फर्क पटक दिया करे तो आपा गटे की जबकि खास तौर जबकि राजस्थान में किस में जबकि RGC बोलिया करे RGC 1066 बाजार में सहज रूप में उपलब्ध है बा किस्म आपा लेर काम में ले सका एक X6 आया करे बा किस्म भी काम में ले सका और एक HG 365 के नाम की जगह किस्म है बा भी आपा आटे जगह काम में ले सका। और यूं आप किस्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी चाहो तो आपा की जगह खेती में एक में जुड़ा जानकार है कृषि विशेषज्ञ और कृषि सुपरवाइजर है बहु भी आप सलाह ले पर और मैं किस्म को चयन कर सको और किस्म को चयन कर पर और पच्चे भाई यूं तो आपा पूरी हाउचेती ध्यान रखा बाहू ते टेम बट बीज को जो को प्रति किले के प्रति बीघे के हिसाब में जो को बीज नाकनो है वो भी अगर कम नाक दे वहाँ तो अपन ने पैदावार मिले को नहीं और ज़्यादा नाक दे वहाँ तो भी मैं ज़्यादा जो को अपा के वहाँ फाल है जो कम लागे तो इनमें लंगे टंगे 1 किले और ले 1.5 किलो के बीच में प्रति बीघे के हिसाब में गंवार को जो को बीज है वो नाकनो चाहिए। और बीज पहले तो देखो किसान भाई अपा हाथ बीज तार बीज नहीं बीज था आजकल बात तो बात रही भी कोनी आजकल एक सीड्रिल आया करे बीहू बीजा तो सीड्रिल आप बी है साहब बीरो जो को नट है या बीरो जो को बीज को नाकण को जो को टाइम है वो सेट कर दा कि हमने 1 बीघे में कर लंगे टंगे 1.5 किलो 1.25 किलो ले 1.5 किलो के बीज में बीज पड़े तो पौधे पौधे की जबकि दूरी है वह मुश्किल 3-4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो कतार कतार की दूरी है वह दूरी भी लंग टंग 6-7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हुए तो भी दूरी के बीच में जो पौधे पनपी बिन पर्याप्त रूप में हवा भी मिल जाए बिन पर्याप्त रूप में जमीन में मौजूद खाद भी मिल जाए और पानी है जो कोई बिन पर्याप्त रूप में मिली तो वो अगर बिन सही रूप में बिन पोषण मिली तो वो आप बडवार बढ़िया करी और बडवार बढ़िया करी बिन फाल भी बढ़िया है। अब रही फाल की बात भी गंवार बाय दियो और ऊ गोफ एर कई किसान भाई के अबार आगे थी गंवार बायड़ो भी है वो देखो गंवार तो गोड गुणो आएगो और वो गंवार है देखो फाल माता हूँ डूबो बट फाल माता अब बिन टेम कई किसान भाई देखे एक भी माता बंदे तो माता बंदे मतलब कई माच्छर हुए तो माच्छर बंदे माच्छर है या माता बंदे जके कारणों भी को फाल बने को फाल नहीं बने भी फली कौन लागे तो बीर वास्ते अपन अंधाधुंधे कोई भी रासायनिक दवाई जो को आनी एक साहब अबार मेथाइल पेराथियोन नाक दियो के मोनोकोटोपस डाल दियो मन मर्जियों जगह दुकान में जोर बे केवर नाक दियो नहीं बी में कितनी जरूरत है पहली बी में कोई जीव है कि माच्छर है कहीं भी में है मेलाथियोन अपन डालनो है कि कहीं डालनो है तो विशेषज्ञों आप थोड़ी सलाह ले लें और कितनी मात्रा में डालनो है भाई बिना जरूरत देखा देखी होड़ा होड़ नहीं करनी होड़ा होड़ करियो भी रोज को रासायनिक छिड़काव आप करा वो छिड़काव एक बार को तो आप लगे फसल में रोग तो खत्म कर दियो बट बीरो असर भी फसल की जो को चारों है बी में भी पड़ी बी को जो को असर है बी बीज जो को बनी बी में भी पड़ी तो वो ही चारों आपा के पशुओं ने ना खा बी को जेर आपा के पशुआ में आई बी पशु को दूध आपा खावा जाने बी दूध को असर आपा में भी आई आपा के टाबरा में भी आई तो भाई देखो किसान भाई आप हाँ जरूरत के हिसाब में फसल ठीक वही वास्ते दवाई छिड़कनी पड़े बट बिना जरूरत जेर ना कर धरती माता ने भी आपा ने बीमार नहीं करनी है और आ बीमार होने साथ साथ अपना पशुधन है आपा का टाबर है आपा खुद भी बीमार हो सका आप जानो भी होगी आजकल कई प्रकार के जबकि हारी बीमारियां हैना समझना ए डॉक्टर लोग आके वे कि अठे आपा के राजस्थान में ई ज्यादा पेस्टिसाइड रे उपयोग ज्यादा रासायनिक ए दवाइयां है आर उपयोग दिनों दिन कैंसर की जकी है बस संख्या बढ़ रही है कैंसर के मरीजों की तो आपा ने ई गंभीर बीमारी आ एक जानलेवा बीमारी है यूं बचन को ई तरीको है कि आपा ज्यादा ज्यादा जैविक जका उत्पाद है बार उपयोग करा रासायनिक जका उत्पाद है या रासायनिक खाद है रासायनिक दवाइयां है रासायनिक पेस्टिसाइड है आर उपयोग आपा कम करा तो यहाँ पर फायदा हो सके तो देखो भैया आ तो बात बताई हुई और टाइम मिली था तई और भी करा बण अब देखो कि एक आप टाइम सारू विशेष यानी बुलाया करा बारी जानकारी भी लिया करा और कई बार किसानन के जाओ बंक जानकारी लेवा तो आज चौपाल माते बुला पर आज की पहली हताई करी और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में
प्रोफेसर है।

0: डॉक्टर रोहित दास जी, बा आपकी सुन दे रहा हूं।
1: हाँ तो देखो किसान भैया, टेम टेम सरू किसान भैया कहीं जाया करा, बाकी हताई भी करा, और किसान भैया की जानकारी वास्ते कई बार विशेषज्ञ ने अट चौपाड़ में बुलावा, और वगत नहीं मिले जनाबा ने फोन में बात करा, जकी खेती बाड़ी हूँ वगत के साथ जकी जरूरत वे जानकारी बा आपकी पूर्ति करा। इन्हीं कड़ी में आज कृषि महाविद्यालय राजा का सहायक प्राध्यापक है डॉक्टर रोहित आसिफ बाजी, आप बाहू संपर्क करियो। हाँ और बाहू आप आज के टाइम में खेती कई जानकारी है लेती आपकी पूर्ति करा। तो सबसे पहले तो बाजिया जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, राम राम सा।
2: राम राम साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने, क्योंकि किसान इस समय सारे खेतीबाड़ी में जुटे हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बाजिया जी, मैं सबू पहली आप वही प्रश्न करना चाहूँ कि अबार है देखो कि यूं तो मान
2: ज्यादातर क्योंकि मानसून की फसल करते हैं, साठी जी की साठी फसल बोलिया कर, लेकिन जी आपने थोड़ी सी जमीन बढ़िया है ठीक है, तो इको मान जी बात।
1: तो आपकी अभी बात आपा खास तौर क्योंकि आपा के जब मारवाड़ की और खास तौर नागौर किया जकी जमीन है, बाजरा और मूंग वास्ते खास तौर आपकी एक पहचान रखे, और अठे को बाजरो है जो को वो पौष्टिकता में भी बहुत अच्छो माने। तो बाजरे की आपा बात करें कि भी आपा के जब किसान भाई और जो मोटे अनाज की बात करें तो सरकार भी आप प्रोत्साहित कर रही है मोटे अनाज के रूप में आपा ज्यादा बाजरो खाउन में उपयोग लेवा। तो डॉक्टर साहब ये बाजरे की आपा की पौष्टिकता बढ़िया बनी रहे आपा के खाउन वास्ते काम में लेवा, तो इनमें आपा ने बाजरे की एडी काई किस्मा काम में लेनी चाहिए जाए अठे के वास्ते आपा की जमी वास्ते, ताकि उपयुक्त भी हो जावे और बांको पैदावार भी ठीक हो जावे और आपा के जकी किसान भाई या जका भी बाजरे को खाउन वास्ते उपयोग करे तो वास्ते भी बा फायदे की बात हो।
2: सही बात है। देखो बाजरे अपना इलाका के लिए तो वरदान साबित है, सीधी सी बात है।
1: हाँ।
2: तो जहाँ ई इलाका के लिए देखी जाए तो जहाँ देशी के साथ साथ में जहाँ अपने जिकी वेरायटी है, जहाँ अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है तो उसकी MPMS 17 आती है वेरायटी, MPMS 21 आती है, MPMS 45 भी है, 42 भी है, HHB जो 69 है ना।
1: हाँ।
2: तो ये बायो फार्टिफाइड वेरायटी भी है, तो HHB 69 हो गया, ये इस प्रकार की वेरायटी है, तो इन वेरायटियों का अपन प्रयोग कर।
1: तो डॉक्टर साहब आप इतनी वेरायटियां बताई है, एमए लंगे टंगे सब भी सगली आप उपयोग कर सका या अपंग वास्ते अटे क्योंकि अपंग जो आप भी।
2: हाँ। ये चार पांच वेरायटी है तो अपना पर्टिकुलर इलाका के लिए ही है साहब।
1: अच्छा।
2: हाँ जो बी का मायने एक तो कहीं जगह इलाका के हिसाब से जो जो ज्यादा तापमान बढ़ना भी तापमान ने भी सहन कर जाए और वहां की बढ़वार और पैदावार क्षमता एक बढ़िया था।
1: बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आज क्योंकि आप कृषि महाविद्यालय में प्रोफेसर हो और अटे आप बच्चा ने भी कृषि संबंधित जानकारी दो, तो ये जकी आज के टाइम में तकनीकी युग आ रही हो है इनमें प्रकारों एक AI को भी खास की पार्टिसिपेंट हो रही हो है जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, तो आपा की खेती की तकनीक में आपकी जानकारी में इरो की उपयोग हो सके।
2: देखो साहब समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। देखो अपन जो ज्यादा खेती बाड़ी में जो नई नई तकनीकों का यूज आ रहा है, क्योंकि देखो अपन 10-20-50 साल पहले बात करें हमारा देश आत्मनिर्भर भी नहीं था खाने पीने में।
1: हाँ हाँ।
2: लेकिन बस अभी देश में सिर्फ एक तेल की है जो तेल के अंदर आत्मनिर्भर नहीं और सारी चीजें हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में शामिल है।
1: बढ़िया बात।
2: लेकिन हम जो इस AI के युग में आ रहे हैं ना अभी धीरे धीरे, तो उससे क्या है कि हमारा जैसे अगर अपन ने देखे AI से पता लगा है कि जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी तो उससे स्प्रे करना हो गया, या फिर जैसे हमारी कोई 2 मिनट का वीडियो से पता लग जाएगा कि हमारा खेत में कितनी परसेंट बीमारियों का अटैक है, उससे पता लग जाएगा कि हमारे खेत के अंदर कितनी परसेंट बीमारियां हैं, कौन सी जो बीमारी है उसका कितना प्रकोप है।
1: अच्छा।
2: और उसमें क्या है AI से पता चल जाएगा भाई इस प्रकार का इसके अंदर जो इसका प्रबंधन करेंगे तो इस प्रकार की समस्याओं कर सकते हैं, चाहे उसमें चाहे खरपतवार का प्रबंधन हो, चाहे अपन कई बार पानी का हो, जैसे पानी का है तो पहले देखो अपन लगातार पानी, आजकल इस प्रकार के मीटर आने लगे तो वो खेत के अंदर पानी होते ही पहले अपने उस जो मोटर चलाते हैं वहीं पे वो वार्निंग सिचुएशन दे देते हैं।
1: अच्छा।
2: कि आपके जो खेत है इसके अंदर पानी की कमी हो गई है।
1: ओहो ठीक बात।
2: जैसे अपने कई बहुत एडवांस सिस्टम आ गए जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना, तो उसमें साहब ऐसा है ऑटोमेटिक से 10 मीटर लगे होते वो पता लगाते कि भाई आपके खेत में पानी की कितना परसेंट पानी बचा हुआ है, ऐसे ऐसे पानी की कमी होती जा रही है, वो जैसे वो वहां सेंसर उसी स्टार्टर के पास पहुंचता है डायरेक्टली उसके अंदर पानी लग जाता है क्योंकि नई तकनीक के साथ। सही बात। या नागौर है तो नागौर में जो मूंग है तो मूंग तो यहाँ पूरे राजस्थान का अकेला ये 30% भाग कवर कर रहा है। और
1: अच्छा।
2: पंचकोरों में भी अपन को पता है भाई पंचकोरों में मूंग बहुत बड़ी योगदान है नागौर में।
1: बहुत बढ़िया।
2: अब लगातार अपन क्या करते हैं अंधाधुंध दवाइयों का उपयोग करते जा रहे हैं भाई, क्योंकि अब देख रहे कई बार दो दो स्प्रे भी कर देते हैं, तीन तीन स्प्रे भी कर देते हैं, कई बार चार चार लोग किसान चार चार स्प्रे भी कर देते हैं। तो हमें देखा देखी भीड़ ना करते हुए कि हमारे किस प्रकार की समस्या आ रही है, किस प्रकार का बीमारी का प्रकोप हो रहा है, कौन से कीड़े लग रहे हैं और किस प्रकार से फाल जड़ रहा है, माथा बंधने की समस्या हो रही है। ये जो समस्याएं होंगी ना, ये हमारे को पूरा, अगर देखो भाई किसान अपना जो

0: धरती माता जमीन है, वो जमीन के ऊपर भी जहरीला प्रभाव होता है।
1: बिल्कुल
0: श्याम जी, आपने बात है पशुओं से अपनी जिंदगी चल रही है भाई, आप खेती बाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी। अब वो जो चीज खाएंगे वही अपने जाके पशु में जाएगा, जहर जाएगा तो पशु में अल्टीमेटली अपने पशु में चला जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ मूंग का चारा ज्यादा इसलिए मूंग का चारा है भाई, जो MSP है वो भी 9000 के आसपास पहुंच गया।
1: बात तो ठीक है, लेकिन एक एक फसल में डॉक्टर साहब एक वो जमीन को अपनी उपजाऊ क्षमता है फर्क पड़ता है।
0: जी जी साहब, देखो आप कई बार देखो आप यहाँ खारा पानी वाला थे तो देखिए अगर समझा करो इस चीज में जिसका जगह थोड़ा खारो पानी है, भारी पानी है, अगर वो एक दो फसल भी कपास की फसल ले भी कमान वो आपको 5-5 साल तानी भी मूंग और मोट
1: लेवल लाइक कौन रहेगा जमीन।
0: हाँ, क्योंकि वो जो नमक होता है ना, ये बहुत संवेदनशील फसल होती है, ये थोड़ा सा नमक होती है इसकी क्या जड़ों से उसके पानी निकलना चालू हो जाता है और वो नुकसान करता है उसकी और जमीन की तो क्वालिटी खराब करता है वो साथ में। क्योंकि अपने क्या थोड़ी होने की वजह से क्या वो लगातार नमक होता है ना, वो जैसे बारिश होगी थोड़ा सा नमक उड़ के नीचे चलाया जाएगा, लेकिन जैसे धूप गिरती है ना तो इस नमक की साफ प्रवृत्ति होती है कि नीचे से चल के वापस ऊपर की तरह आ जाता है। धूप ज्यादा गिरेगी ना तो वो जो नमक नीचे गया हुआ था गुड़ के वो वापस अपने जमीन की सतह पे आके बैठ जाता है वापस।
1: बात कहो के भाई और जबको ज्यादा पानी भारो अभी को अपन कम होकर उपयोग कर वर्षा जल को अपन ज्यादा।
0: जब अपन नागौर की बात जैसे मेड़ता में तो अब धीरे धीरे क्या है नागौर पूरे नागौर जिले में अपन फार्म पौंड है तलाई जो बनाते हैं डिग्गी बना रहे वो डिग्गी सबसे ज्यादा है अब जिसे मेड़ता में हर खेत मिल जाएंगी।
1: ठीक बात है।
0: पिछले बार साहब ज्यादा बारिश होने की वजह से करीबन 55,000 हेक्टेयर अपना नागौर के अंदर खराब हो गया था, 55,000 हेक्टेयर एरिया खराब हो गया था ज्यादा बारिश की वजह से मूंग खराब हो गई।
1: ओहो बिल्कुल।
0: अब मूंग की सब खास बात यह है कि इनकी जड़ों को हमेशा जैसे हवा अब वो हवा का संचार तब रहेगा जब वो पानी भर जाएगा ज्यादा, जब पूरे जो जमीन है वो जमीन के सारे जो रंध्र होते हैं उनमें पानी भर जाएगा तो उनको सांस नहीं मिल पाएंगे जड़े को और जड़े जल्दी 2-3 दिन में खराब हो जाती है, पौधा मुरझाने लग जाता है, अल्टीमेटली खराब हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक बात है। तो
0: इसमें क्या है कि जैसे ढलान वाला इलाका है उसके अंदर अपन क्या है जैसे खेत लाई बना ली पानी का कर लिया तो उसमें पानी भी हो जाएगा और उस पानी का गली सी जिनमें काम ले लिया।
1: ठीक बात है। तो आप कहो मतलब फार्म पोन्ड आपा के लिए किसान आवास तो बहुत उपयोगी है, ये बरसात को जो को पानी है इको भी आपा भी फार्म पोन्ड में संरक्षण कर सका,
0: वो खेत भी खराब कन्वेयर जो को बचड़ो पानी है वो आपने बी सीजन कमाने अगली सीजन कमाने जीरा है तो जीरा में दो ही पानी लागे साहब
1: भी काम।
0: अब जी अब की बार है जी मेड़ता कमाने जीरो को भी हो तो भी को रीजन हो कि बारिश ज्यादा हुई सब जगह खेत की बनाई रही है तो भी कमाने जो मूंग खराब है सारा खेता कमाए ना जीरो बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: बिल्कुल ठीक बात। अभी देखो डॉक्टर साहब एक बात मैं और करूँ आपा जबकि बाजरे की बात आप कर ली भी मैं आप किस्म भी बता दी रटे की वास्ते खास तौर बता दी, तो बाजरे में अभी जबकि बुआई कर रही है किसान भाई बीर वास्ते कोई बीज उपचारित करना या कोई विशेष सावधानी की जरूरत है।
0: देखो साहब इन बाजरे में जी एक तो आप देसी बाजरी एक आया अगर बाजरी में हाइब्रिड आया
1: हाँ।
0: जी कई बार कहे किसान ज्यादा उत्पादन और देशी बाजरी बोलिया करना।
1: ठीक बात है।
0: वो बात तो 20 साल से चला गया। अब जी आज की मैं बताइए सारा हाइब्रिड वेरायटी आपको जो उत्पादन है 20-25 क्विंटल नॉर्मल जिकी जमीन है भी कमाने प्रति हेक्टेयर का हिसाब से आपको उत्पादन आया।
1: ठीक बात है।
0: अब ए बीज जिकी आया करें जी 70 सौ कोई बेहतर दिन ले कोई 75 दिन ले कुल मिलाकर 70-75 या 80 दिन तक फसल आराम से पूरी पक जाए।
1: ठीक है।
0: तो एक मान जी ले लेकिन जो एच की जिकी वेरायटी आप MPM में 17 होगी 21 होगी या 67 होगी या 69 होगी तो ए वेरायटी जिकी ना अब एक मायने का ही आकर की ए जिकी जो बीज उपचारित भी आकर ना तो बिया कई बार तो कंपनी भी करिया लेकिन आपन का ही करना है की जी 2 ग्राम प्रति बीज का हिसाब से कार्बेंडाजीन प्लस मेनकोजेब साथ का नाम से एक दवाई आया करे साथ ना।
1: ठीक बात है।
0: हाँ। तो बा कार्बेंडाजीन मेनकोजेब के साथ मिला और बाद में भी को बीज को उपचारित कर 3-4 घंटा तक रख कर बाद में भिजाया करे ताकि शुरुआत के मान जी कई बार गए जी खेत में नमी ज्यादा रह जाए या कई बार क्या उसके अंदर वो शुरुआत में जब उगा होता है उसका तो उस समय उसके अंदर को छोटी छोटी जो फंगस लगती है ना वो जो बीमारी वो फंगस का अटैक नहीं होगा और पौधा जो शुरुआत के उसका अंकुरण होगा बहुत बढ़िया अंकुरण होगा।
1: बहुत बढ़िया बात। जैसे ही दूजी बरसात हुए भी मैं किसान भाई है जो को निराई गुड़ाई को काम और आजकल कई भाई है जो कि भी मगर ज्यादा खरपतवार हो जाए तो कोई रासायनिक दवाइयों का उपयोग करे इस बारे में आप लोग कहीं करो।
0: देखो साहब अगर घर पे खेती हो है अगर घर के आदमी है कम खेती है तब तो आराम से जो हाथ के साथ में निराई गुड़ाई करते हैं सबसे बेस्ट उपाय।
1: ठीक है
0: भाई क्योंकि देखो अगर फिर भी नहीं होता है तो इसके अंदर क्या है कि अपन जो दवाई होती है ना तो एट्राजीन के नाम से दवाई आती है साहब तो वो एट्राजीन की दवाई होती है। एक तो इसमें क्या है एट्राजीन प्री इमरजेंस आता है जैसे आपने बुआई कर दी बुआई के 24 घंटे बाद में उसके ऊपर उस ताकि वो बीज तो उस जमीन के अंदर पड़ा रहेगा तो बुआई करते ऊपर की तरफ जो एट्राजीन है उस

0: जीन का अपन को अच्छे से ही वो स्प्रे करना है ताकि उसके अंदर सारी के जो खरपतवार उगने वाले है ना वो ऊपर ऊपर वो सारी खत्म हो जाएंगी साहब। और वो जो बीज है उस बीज के ऊपर भी नहीं गिरेगा, कहीं सांटा ज्यादा होता है, मोथा ज्यादा होता है, तो समय हमें उस हिसाब से दवाइयों का चयन करना है ताकि उसके अंदर भाई वो कम से कम जो है खरपतवार है
1: निराकरण कर सके। बहुत ठीक बात, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप चौपाड़ में जुड़िया और किसान भाई ने अभी खरीफ की फसल की तैयारी और बाजरी की जानकारी दी, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हाँ तो देखो किसान भैया, अब बात जकी रोहितास जी आपकी और आप सुनी बैज को कि खेती की अबार की जरूरत है और खेती में प्रयोग करने वाला जकी रासायनिक दवाइयां है और खेती में जल को आप किया संचय कर सकें बीरे बारे में भी पूरी जानकारी दी भी। तो आप हतई करा अब एक पहली नागौर मंडी बाजार का भाव आयोडा है, बे आपने पुख्ता कर रहा। आज नागौर मंडी में मूंग बिकिया 5,500 लेर 7,500, गंवार बिकियो 5,000 रुपये लेर 5,715, जीरेरा भावरिया 17,000 रुपये लेर 21,300, सूप बिकी 7,000 रुपये लेर 13,300, इसबगोल का भावरिया 9,000 रुपये लेर 12,600, असाड़ियों बिक्यो 5,600 रुपये लेर 5,850, दाना मेथीरा भावरिया 5,700 लेर 8,000 रुपया और सिंधी सुआ का भावरिया 6,000 रुपये लेर 7,500। इन बात तारामीरो बिक्यो 5,500 लेर 6,200, जवारी बोली लगी 4,500 लेर 5,800, काला तिल बिकिया 9,000 रुपये लेर 11,000 और धोड़ा तिल बिकिया 10,000 रुपये लेर 12,000। इन भात चिनारा भावरिया 5,000 रुपये लेर 5,600। एरिया नागौर मंडी का आज भाव। अब एक थोड़ा सा लेवा ब्रेक पर पच करा और हताई।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तो देखो भैया, अब आप हताई करार काशी कामरी बातें भी सुनी बन हताएं करते हैं। देखो मने याद आएगी भी खाली बातें बताऊं ब्याड़ू के जो पार पड़े को नहीं भाई उड़ी गिरिया करे कोई गीत और भजन री। तो आज आपने एक भजन सुनावा हेली चाले तो हरी मिल जाए, कलाकार है रामचंद्र गोयल और हमारा साथी। तो सुनो भैया और लोक भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: तो भैया देखो, रामचंद्र गोयल और मारे साथ यारो गैडो लोक भजन हेली चाले तो हरी मिल जाए, मन तो और घणो ही करे है कि थम हताई करा और कोड भी हुए बनवे। आज रो जो को टेम है बो आपाने इजाजत देवे कोनी, तो आज रो तेवड़ियो भगत हो रियो पूरो तंग राधेश्याम भैन दीरो सीख करा। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी,
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी,
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IBRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
2: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
2: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेल बागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
2: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
3: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
6: प्रणाम गुरुदेव।
7: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
6: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
7: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
6: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
7: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
6: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। का धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
7: लयात्मक प्रस्तुति।
6: शीर्षक है
7: अभी न होगा मेरा अंत।
6: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। रात्रि के 8 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जिसे अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी, आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया। दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवंबर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने ये भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधा कृष्णन के ने बाद में खरगे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खरगे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधा कृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खरगे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खरगे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप संसद समीक्षा सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब

आप सुन रहे हैं फिल्मी गज़लें और कव्वालियाँ, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी कव्वालियाँ। तो अगली कव्वाली आपके लिए फिल्म गोल से। आवाज़ें हैं आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल को। आप सुन रहे हैं फिल्मी गजलें और कव्वालियाँ। लीजिए अगली प्रस्तुति आपके लिए फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से जावेद अली की आवाज़ में।

0: गाने नए जमाने के। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म सिंह इज ब्लिंग से, आवाजें मीत ब्रोज, लाभ जुनेजा, अपेक्षा दांडेकर की।
1: Banjo!

आप सुन रहे हैं गाने नए जमाने के। अगला गाना आपके लिए अख्तर चन्नई की आवाज़ में, फिल्म का नाम फैंटम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से गाने नए जमाने के।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अगला गीत आपके लिए फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाजें हैं विशाल ददलानी, नकाश अजीज और प्रीतम की।

इसी गीत के साथ गाने नए जमाने के कई फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिन चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
4: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे बेगम अख्तर की आवाज़ में चंद गजलें। पेश पहली गजल।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर को। इसी गज़ल के साथ हमारा आज का ये सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

तो सुन आई ना तू तू ही पहचाने ना जो हूँ वो माने ना नाजनबी तू बन भी हमक है दिल में उठी आलापों सी है बजी सांसों में तू मधुम से रागों सा केसर

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म फिलौरी से, आवाजें रोमी और पवनी पांडे की थी। गीत के बोल अन्विता दत्त के और संगीत शाश्वत सचदेव का।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके

0: कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और अदाएं कुछ ऐसी कि बिजलियां गिरा दें।

0: विकास का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अश्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवों का कारोबार था उनका। जिंदगी की राहों में आगे चलकर यूं हुआ कि मुमताज की माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए। ये तब की बात है जब मुमताज महज 16 साल की थीं। जाहिर है कि जिंदगी कठिन राहों पर चल पड़ी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करती रहीं। चूंकि घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए माँ ने सोचा कि क्यों ना बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस तरह से जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो मुमताज की माँ ने अपनी दोनों बेटियों यानी मुमताज और मलिका को फिल्मों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 11 साल की छोटी उम्र में मुमताज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। पहली फिल्म थी सन 1958 में आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के हीरो थे तलत महमूद और हीरोइन थी नूतन।
1: सच बता

0: सच बता तू मुझ पे फिदा।
1: इसके बाद बतौर बाल कलाकार मुमताज नजर आईं यास्मीन और लाजवंती जैसी फिल्मों में।

और इस तरह से छोटे मोटे रोल उन्हें भी मिलते रहे और उनकी बहन को भी मिलते रहे। जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो 1960 के आसपास उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था स्त्री। इसके बाद आई वल्लाह क्या बात है और 1963 में आई सेहरा। ये वो दौर है जब मुमताज न बच्ची थी और ना बड़ी।

इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रलहन एक फिल्म बना रहे थे, गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म चल निकली, जाहिर है कि मुमताज की एक खास पहचान बन गई। 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो, इसमें भी मुमताज की एक छोटी सी भूमिका थी। एक अभिनेत्री के तौर पर मुमताज अपनी मुकम्मल पहचान कायम करने की जद्दोजहद में लगी थी। दिल में कुछ बड़ा करने के ख्वाब थे, मौके सामने आ नहीं रहे थे, इसलिए जिस तरह की फिल्में आईं, मुमताज उन्हें मंजूर करती चली गईं। सन 1962 के आसपास की बात है, जाने माने पहलवान और हीरो दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। क्योंकि दारा सिंह की फिल्में स्टंट फिल्में होती थीं, बहुत सारी नामचीन हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। सबकी अपनी अपनी वजह थी, पर इन्हीं दिनों में मुमताज अपनी बहन मल्लिका के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर गईं। दारा सिंह ने मुमताज को देखा और उन्हें लगा कि मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन मिल गई है। मुमताज को भी एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी, तो बस यहाँ से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का एक दिलचस्प इतिहास। हीरो दारा सिंह, हीरोइन मुमताज।

अगले 6 साल तक एक के बाद एक स्टंट फिल्में आती चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों की कुल तादाद बनी 16। जी हाँ, मुमताज और दारा सिंह ने 16 फिल्मों में काम किया है। वीर भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन और किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर आजम, रुस्तम ए हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों में काम किया मुमताज और दारा सिंह ने।

इस दौरान मुमताज ने कुछ और सहायक भूमिकाएं की, जैसे फिल्म राम और श्याम में। ये फिल्म 1967 में आई थी। आदमी और इंसान 1969 में आई। इन दोनों फिल्मों के लिए मुमताज को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

यहां तक आते आते मुमताज की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि राज खोसला अपनी एक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उन्हें अचानक नजर आई मुमताज। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया। ये फिल्म थी दो रास्ते।

रास्ते ने न केवल राजेश खन्ना को एक जोरदार पहचान दी, बल्कि मुमताज भी बतौर नायिका छा गई लोगों के दिलों पर।

सन 1969 में दो रास्ते के अलावा एक और फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ मुमताज की। ये थी नरेंद्र बेदी की फिल्म बंधन। मुमताज का करियर अब चढ़ाव पर था। उनकी खूबसूरती, उनके अभिनय, उनकी अदाओं की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानी जिंदगी में जद्दोजहद के दिन अब कम हो रहे थे और कामयाबी उनकी राहों को चूम रही थी। दो रास्ते के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी जोरदार तरीके से जम गई। एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने अब आपकी नजर। सन 1970, सच्चा झूठा।

0: 1971 दुश्मन।
1: मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा।
2: क्या देखा, क्या देखा?
1: एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है। एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है।
0: 1972 अपना देश।

फिल्में हिट हो रही थीं, बल्कि इनके गाने लोगों की जबान पर सज रहे थे। दिलचस्प ये था कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लेकर फिल्में लिखी जा रही थीं, निर्देशकों की लाइन लगती थी इन्हें बतौर हीरो हीरोइन साइन करने के लिए। इसी दौरान मुमताज ने एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की, 1970 में आई खिलौना।

ऐसा नहीं था कि मुमताज के हाथ ये कामयाबी एकदम अचानक आ गई हो। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया था। आपको बताएं कि एक दौर ऐसा था जब बहुत सारे नामी नायकों ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लड़की तो बी ग्रेड की हीरोइन है। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। 70 के दशक में शशि कपूर एक कामयाब अभिनेता थे। 1970 में फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा, जिसमें बतौर नायक उन्हें साइन किया जा रहा था और बतौर नायिका मुमताज को, पर शशि कपूर ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और बाद में ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी तो हिट हो ही रही थी, लेकिन आगे चलकर शशि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में उन्होंने ये सिफारिश की कि उनकी हीरोइन के तौर पर मुमताज को साइन किया जाए और यहां शशि कपूर और मुमताज एक साथ नजर आए।

मुमताज की खासियत ये है कि बहुत कामयाब, बहुत नामी और बहुत बड़ी हीरोइन बनने के बावजूद उन्होंने किसी नए हीरो के साथ काम करने से इनकार नहीं किया। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। 5 फुट 7 इंच का एक नौजवान फिल्मों में संघर्ष कर रहा था। उसकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। सन 1973 में मुमताज को ये कहा गया कि क्या आप इस अभिनेता के साथ काम करेंगी। मुमताज ने फौरन हाँ कह दिया। ये फिल्म थी बंधे हाथ और अभिनेता थे अमिताभ बच्चन।

उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देव आनंद के साथ उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, और देव के साथ वो तेरे मेरे सपने में भी नजर आई।